चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुबारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं रहना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने यह रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू यह वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहती सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहती कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे। उस सच दी आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुल्म करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता, पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नींह रखण लगिया हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ए शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण दा संदेश

0: remind ourselves of the joy and the inspiration and the love and the hope and the projection and the prayer that we've been blessed to live in this lifestyle through the role model of Guru Gobind Singh. So it's not only that we're celebrating what actually happened on Baisakhi Day, but the spirit behind what Guru Gobind Singh meant and what he felt throughout his life. The first Shabad that we're going to sing is Hum Eh Kaaj Jagat Moh Aaye Tarum Hed Gurudev Patai. It's Guru Gobind Singh telling his own story and speaking to us plainly about what he came to this earth to do. So please sing along or sit up straight, close your eyes, meditate, and allow the words of your Guru, of our Guru, to penetrate into your heart so that you leave here feeling like Guru Gobind Singh felt.
1: मैं बस एक गल कहनी चाहता हां कि तुसी अपना बिल्कुल जिदा सी हुन योग जिदा करना सिखिया होया रे मन ए विद योग कमाओ. पर एक गल है, पहला अपना मन नु बिल्कुल शांत करो, बिल्कुल हिलना नहीं देना, कोई गल नहीं सुनना मन तो, बस अपना अखां बंद के दोनों कन्ना नाल सुनना, बिल्कुल आसन पूरा पक्का विच बैठ जाओ, पूरा पक्का आसन विच बैठो, जिदा अपना गुरु साहिबां महाराज बैठदे हैं. भावें तुसी हुण अपना जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिदा हुण बैठे हैं, हिलदे नहीं, तुसी असी सारे जाने इकट्ठे उदा ही बनना. एक पुरातन परंपरा हैगे है, सारे विद्या जो इंडिया च चलता है वो गुरु शीशा परंपरा नाल चलता है. शायद तुसी इस परंपरा का नाम सुनिया होया, पर मैं एक गल दसना, शिष का मतलब की है, गुरु ते शिष, शिष होंदा शिशा, गुरु दे रिफ्लैक्शन, गुरु दी एग्जैक्ट रिफ्लैक्शन. अगर असं यही गल मनते हैं फिर असी अपना गुरु दे वर्गा बनना. सारे जाने, सारे संगत कट्ठे आपां अखां बंद करके गुरु गोबिंद सिंह की यादी च गुरु गोबिंद सिंह वर्गा बनना है.

0: देखने की कृपा होएगा कि नहीं। इट्स अप टू अस टुगेदर।
1: आप जपाए जपे सो नाओ। गुरु गोविंद सिंह जरूर मेहर करेंगे, जरूर, क्यों नहीं। अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं, नहीं मानेंगे? मानेंगे जरूर।

गंभीरा तन तन वाह वाहो सर्व कला भरपूर शब्द गुरु जी दी पवित्र हजूरी अंदर हयाती दियां चंद खड़िया संगत रूप विच सफला रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई वीर बुजुर्ग अजीजान बच्चे बच्चियो हाजरीन वकत जियो आओ सारे ही गल के सतपुरां दे दर घर दे मशहूर होविए ते प्यार सहित संपूर्ण फतेह जाविए।

आखन लगे भी जिन्ने तेरे पैसे बनगे मैं देवांगा, पैसे लै लमी तू किराया लै लमी। पैसियां बल देख के मलाह दा मन मन गया, चंगा बई बैठ जा बेड़ी बिच, अज दोनों ही जाने लोई जी ते कबीर जी बेड़ी बिच बैठे। ज्यों ही बेड़ी दे विच चढ़े ने अगों सेठ उठ के खलो गया, कोई मलाह है की करी जांदा है, गरीबड़िया जिया नू मेरे नाल।

लेने ने पांच गुना ज्यादा मैं तेनू दे देवांगा, इनू थले उतार दे। छोटे लोकां दे नाल बैठण दे नाल शोभा कट जांदी है। ते कबीर जी

मार्ग का कीर्तनियां मरदाना पटने शहर दिया गलियां से बाजारा फिर मार्ग की दिखती रिदार इसके कोल दान देने वाले ने बख्शिश की थी मरदानिया ए अमर वस्तु पर बड़ी हैरानी है इससे देने वाला ही कोई

सदसन का रखा उसत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अनदिन मन तक उसत करया करो भाई गुरु जी उसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला उसत गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहेगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओने नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शे है आखिर जी एक गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो एक गुरुमुखता है एक गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे सात संगत यह जो वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए फरीद जी ने किया सब का ब्रह्मांड ठाहण मूल मचांगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न सही गुरु नानक दास जी जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे भी तोड़ा न पड़े प्यार भरे बचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया में वंडेगी सिख दी ये ड्यूटी मेरी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम

पर मोहे इहै शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तो पिछे ना हटी, जुल्म नू देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मावां ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दिया नीयां नूं पक्या कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे शिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ड़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती, वो कहती है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौडियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखू हो जहरी कहावई।

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकण लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं वी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर? कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नु पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति विरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नूं वी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा वी ध्यान रखदी है, ओदा वी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वो किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साई बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे, फरीदा ढूंढे दिए सुहाग को,

सतगुरु कहने ने फतेह शाह राजा बिना मतलब ही साडे ते इसने हमला बोल दिता। सतगुरु कहने ने सी दीवान दे विच बैठे हुए सा, जद हमला होया उपरंत फतेह शाह को पा तब राजा लोह परा हम सो बिन काजा। बिना मतलब ही इसने साडे ते हमला बोल दिता।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमक मटकी कान फोरन। कन्नी कृपाल चंद उदासी जी ने आए जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी छिछ इच्छन कदा मेद जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचो मगध दियां छिट्टां इंज बार आईयां जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दित्ती होवे।

आनंद चंदन कियो कोप पारो लगाई बरछी कृपान सवारो। सतगुरु दे दीवान आनंद चंद जी कहिंदे ने कृपाल चंद उदासी वाल आउंदे आ नवाब खां नूं तके कि इन्हां नूं मारन लई आ रहा है। कहिंदे ने दीवान ने अगां वध के वार कीता तहानंद चंदन कियो को पारो लगाई बरछी कृपान समारो। नवाब खां बच गए, कृपान कढ ले। जद कृपान कढ के जंग करना शुरू कीता साहिब कहिंदे ने टुटी तेग तिखी कड़े जम दंडन। ओ तिखी तेग भी टुट गई, जंग करदे आ जद तेग टुट गई कड़े जम दंडन। इन्हां अपनी कटार कढ ले। जद कटार कढी ना कटार कढ के उसके सीने दे विच कोप दिती, उस नूं मैदानी जंग अंदर लिटा दिता। ते सतगुर खुश हुंदे इस नूं वर देंदे, कहिंदे ने कि मैनू इतनी प्रसन्नता होई। टुटी तेग तिखी कड़े जम दंडन, हटी राखियां लज बसन सडढ़न। साहिब कहिंदे ने इन्हां सोढ़ी अंश दी लाज रख ली नवाब खां नूं मार के। हुण सतगुर कहिंदे ने इस जंग अंदर एक जवान बड़े गुस्से ते क्रोध विच आया, ओ कौन सी? तहां एक बीरंग हरिचंद को पेओ, पाली पात सौ खेत में पारो पेओ। कहिंदे ने हरिचंद आया जिसने पाली पात खेत अंदर अपना पैर टका के ना जंग करना शुरू कीता। महाक्रोध के तीर तीखे प्रहारे, लगे जोन के ताहे पारे पधारे। कहिंदे ने हरिचंद इतने गुस्से दे विच तीर चलांदा है, ओ तीर जिसनू ही लगदा है उसते आर पार हो जांदा है। हरिचंद क्रुदन हने सूर सुदन, पाले बाण बाए बड़े सैन गाए। इन्हें बड़े ही बाण चलाए, बड़े सैन किसने मार दिते मैदाने जंग अंदर लटा दिते। क्यों? रसंग रुदंग राचे महालोभ माचे, क्योंकि गुस्से दे विच रचिया सी, लोहे दी तरह लाल होया जंग कर रहा सी। हाने शस्त्र तार